गली गली नगर नगर भटक रहा है तू अगर दुआ तेरी कबूल हो जो चाहता है तू अगर यजीदियों को छोड़ आ कुछ हुसैनियों में बैठ जा।

तेरा वजूद सरापा तजल्लिये अफरंग, कि तू वहां के इमारत घरों की है तामीर, मगर ये पैकर खाकी खुदी से है खाली, फकत नयाम है तू जरनिगार बेशमशीर।